0: 90.8 FM。
1: और इस वक्त हमारे दिन ना तो एक छोटी सी कहानी सुनते हैं जिससे मेरे और आपकी जिंदगी में थोड़ा बहुत तो भी कुछ बदलाव आए। क्या आपने कभी सोचा है कि खुश रहना जरूरी क्यों है? आज एक छोटी सी कहानी इसी पर सुनाता हूँ। एक बार एक आदमी था, नाम था मोहन। सब कुछ था उसके पास, अच्छी नौकरी, बड़ा घर, गाड़ी, लेकिन चेहरे पर एक चीज नहीं थी, वो थी मुस्कान। हर वक्त परेशान टेंशन में रहता था। एक दिन उसका 7 साल का बेटा उसके पास आया और कहा, पापा आप हंसते क्यों नहीं हो? आपको हमेशा गुस्सा क्यों आता है? मोहन एकदम चुप हो गया। सोचता रहा कि सच में यार, मैंने तो हंसना ही बंद कर दिया है। उस रात उसने पहली बार फोन बंद किया, लैपटॉप बंद किया और अपने बेटे के साथ बैठकर उसका फेवरेट कार्टून देखा। फिर दोनों ने एक साथ मिलकर मैगी बनाई और मोहन उस दिन पहली बार बिना वजह से जोर से हंसने लगा। तब उसे समझ में आया, खुशी कोई बड़ी चीज नहीं होती, खुशी वो पल होते हैं जो हम जीना भूल जाते हैं। और खुश रहना इसलिए जरूरी है क्योंकि जिंदगी का असली मकसद बस काम करना नहीं, जीना भी है। तो दोस्तों, आज से एक प्रॉमिस करो यार, रोज थोड़ा सा टाइम खुद के लिए, अपनों के लिए और थोड़ी सी मुस्कान के लिए जरूर निकालो, क्योंकि मुस्कान की चमकान बरकरार रहेगी तो जिंदगी गुलजार रहेगी। मैं हूँ आपका दोस्त और होस्ट आरजे अदनान। इतना ही कहूंगा कि हमेशा हंसते रहो, मुस्कुराते रहो। जिंदगी में तकलीफें आएगी, आपके बॉस को देखकर आपका मूड खराब होगा, लेकिन मुस्कान की चमकान खराब मत होने दो। और बाकी आपको कहानियों का सफर कैसा लगता है ये भी बताना मुझे, DM ऑन इंस्टा आरजे अदनान एंड स्टे ट्यून्ड। किस्सों का कारवा विद आरजे अदनान ऑन MGM 90.8 FM।

गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट आरजे अदनान और आप सुन रहे हो All is well, RJ Adnan का मॉर्निंग शो, फ्रेशनेस लाइव रेडियो का फ्लो ऑन MGM 90.8 FM। क्या आप जानते हो कि एक ऐसी जादुई चीज है जो आपके किचन में ही मौजूद है और आपके शरीर का रिबूट बटन दबा सकती है? नहीं, मैं किसी महंगी मशीन की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ पानी की। तो हेल्थ टिप्स में जरा इसके बारे में जानते हैं, पानी का जादू। नियम बहुत सिंपल है, सुबह आँख खुलते ही चाय या कॉफी से पहले बस एक गिलास गुनगुना पानी। जैसे ही हल्का गर्म पानी आपके अंदर जाता है, ये आपके शरीर के सफाई तंत्र यानी कि मेटाबॉलिज्म को एक्टिव कर देता है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे आप सुबह अपनी गाड़ी स्टार्ट करने से पहले थोड़ा वार्म करते हैं यानी कि किक मारते हैं, उस तरीके से ये जादुई गिलास ना आपकी स्किन को ग्लो कर देगा। इसी के साथ रात भर जमा हुआ टॉक्सिक यानी गंदगी को भी बाहर निकाल फेंकेगा। साइंटिस्ट इसे कहते हैं कि आपके पाचन तंत्र को भी जगाता है और आपको पूरे दिन एनर्जी देता है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका चेहरा चमके और पेट हल्का रहे तो सुबह इस जादू को आजमाइएगा, गुनगुना पानी पिएगा। तो बस अपनी सेहत के लिए एक घूट प्यार का, मेरा मतलब है गुनगुने पानी का। मैं फिर मिलूंगा आपसे एक ब्रेक के बाद, लेकिन ये हेल्थ टिप्स में बातें याद रखिए और ढेर सारी मस्ती और गानों के साथ सुनते रहिए।

0: फरमाइश फरमाइश और फरमाइश, आपकी फरमाइश सर आंखों पर, आरजे अदनान आपके साथ
1: आज से फरमाइश आली आहे राहुल जाधव कडून या गाण्यासाठी।

0: open. For more information, call on 9404942999.
1: क्या आप इंग्लिश, फ्रेंच, जर्मन या फिर जापानी सीखना चाहते हैं, या फिर अरेबिक, संस्कृत, मराठी और उर्दू में माहिर बनना चाहते हैं?
2: तो एमसीएम यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन एंड फॉरेन लैंग्वेज लेकर आया है बीए ऑनर्स इन इंग्लिश, एमए इंग्लिश, एमए मराठी, एमए हिंदी, एमए उर्दू, एमए संस्कृत, पीजी डिप्लोमा इन अरेबिक, डिप्लोमा प्रोग्राम्स, क्रिएटिव राइटिंग इन इंग्लिश, संस्कृत, फ्रेंच, जर्मन, उर्दू, जापानीज, पर्शियन एंड ट्रांसलेशन।
1: लिमिटेड सीट्स अवेलेबल, विजिट www.mgmu.ac.in और कॉल करें 9763 67 9245 और 9665353515।

कुछ साल पहले ना तो अपने छत्रपति संभाजी नगर में G20 परिषद हो गई थी और उस देर में यार अपना शहर कितना खूबसूरत नजर आ रहा था, याद तो है ना आपको। यू आर लिसनिंग MGM 90.8 FM, RJ अदनान आपके साथ है। एंड वो परिषद खत्म हो गया और उसके बाद फिर धीरे धीरे शहर पहले के जैसा जैसे थे सिचुएशन में आ गया था। एंड साफ सफाई वगैरह कुछ नहीं थी, पूरी पेंटिंग्स खराब हो गई थी। अब वापस से कहा गया है महापौर की तरफ से कि आने वाले वक्त में अपना शहर फिर से उसी तरीके से खूबसूरती से उभरते हुए नजर आएगा और शहर में दीवारों पर पेंटिंग्स होगी, सफाई होगी, सब रास्ते एकदम चकाचक हो जाएंगे, एकदम ऐसे स्मूथ हो जाएंगे। और उसके लिए ना तो अभी काम शुरू हो चुका है और इंडिया में ना तो सबसे खूबसूरत शहर और सफाई के मामले में इंदौर है ऐसा कहा जाता है। तो वही पैटर्न अपने छत्रपति संभाजीनगर में भी अपनाने वाले हैं और उस तरीके से अपने शहर को एक नए ओर लेकर जाने का काम ये शुरू होने वाला है और पूरे शहर में वॉर्ली पेंटिंग यूज की जाएगी और उसके जरिए अपने शहर को खूबसूरत बनाने की कोशिश होगी और इसका प्लानिंग शुरू हो चुका है एंड वर्क आफ्टर दिवाली से इसका शुरू हो सकता है ऐसा भी कहा जा रहा है। तो आई होप कि उसके बाद अपना शहर फिर से एक बार खूबसूरत नजर आएगा और खूबसूरती को बरकरार रखने का काम ये हम सबका है। तो ये भी याद रखिएगा, अपने शहर को गंदा मत कीजिए। बाकी तो बेस्ट विशेस फॉर दिस ब्यूटीफुल इनिशिएटिव एंड स्टे ट्यून्ड।

0: आपने अपने गाड़ियों पर HSRP नंबर प्लेट लगाई है क्या? सच्ची सच्ची कहना, लगाई है या नहीं, या भूल गए? अगर भूल गए तो भाई साहब और बहन जी, दादाजी, दादी जी, अंकल जी, मौसा जी, याद रखिएगा, आपको फाइन भरना पड़ेगा, वो भी तकरीबन 1000 रुपए तक का। देखो, RTO ने हम सभी को डेडलाइन दी थी 30 जून तक की, और 30 जून से पहले हम सभी को अपने गाड़ियों पर HSRP नंबर प्लेट लगाना कंपलसरी था, और उसके बाद अब ये डेडलाइन खत्म हो चुकी है। एंड आज से 1 जुलाई के बाद जिन जिन गाड़ियों पर HSRP नंबर प्लेट नहीं रहेगी, उन पर RTO 1000 रुपए का फाइन मारने वाला है। तो तकरीबन अपने शहर में 4 लाख से भी ज्यादा गाड़ियों पर ये HSRP नंबर प्लेट लगा दी गई है, और 1 लाख से भी ज्यादा गाड़ियों पर नंबर प्लेट लगाना अब तक बाकी है। अब मन में सवाल आएगा, ठीक है ना भाई, इतना क्या है? अरे भाई, इतना क्या है नहीं, बहुत कुछ हो सकता है। और क्या कुछ हो सकता है, और आपके कौन कौन से काम आप नहीं कर पाओगे अगर आपके गाड़ी पर HSRP नंबर प्लेट नहीं रहेगी, वो बताऊंगा मैं आपको कुछ ही देर में। तब तक स्टे प्राण्यांच्या आरोग्याची आता खास काळजी MGM पेट केअर पेट क्लिनिक। आरोग्य तपासणी, उपचार, शस्त्रक्रिया, लसीकरण आणि अनेक पशुवैद्यकीय सेवा एकाच ठिकाणी। MGM क्रिकेट स्टेडियम जवळ N6। कॉन्टॅक्ट नंबर 9860679130। MGM पेट केअर।
1: फार्मसी मध्ये गुणवत्ता आणि संशोधन पूर्ण शिक्षणासाठी
2: MGM विद्यापीठाच्या डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्युटिकल सायन्स मध्ये प्रवेश घ्या,
1: जिथे डिप्लोमा इन फार्मसी अँड बॅचलर ऑफ फार्मसी मध्ये ऍडमिशन सुरू। ऑल्सो डायरेक्ट ऍडमिशन इन बी फार्मसी सेकंड इयर। अवेल अट्रॅक्टिव्ह स्कॉलरशिप।
2: अत्याधुनिक अशी लॅबोरेटरी, उच्च शिक्षित आणि अनुभवी स्टाफ, भव्य दिव्य असा MGM कॅम्पस। गुणवत्ता आणि दर्जेदार शिक्षणासाठी आजच प्रवेश निश्चित करा।
1: फॉर ऍडमिशन कॉन्टॅक्ट 9371714265 और विजिट www.mgmu.ac.in।
3: ऍडमिशन ओपन MGM युनिव्हर्सिटी स्कूल ऑफ इंजिनिअरिंग अँड टेक्नॉलॉजी। प्रोग्राम्स BTech 4 इयर्स आफ्टर HSC, कम्प्युटर सायन्स अँड इंजिनिअरिंग, IoT, सायबर सिक्युरिटी इन्क्लुडिंग ब्लॉकचेन टेक्नॉलॉजी, कम्प्युटर सायन्स अँड इंजिनिअरिंग, सायबर सिक्युरिटी, इलेक्ट्रॉनिक्स engineering, VLSI design and technology, electrical engineering, robotics and automation. For admission visit mgmu.ac.in or contact 9371714253 or visit MGM campus N6 Sidco, Chhatrapati Sambhajinagar.

0: कामा असतात ते काम तुमचे आरटीओ मध्ये होणार नाहीत. तो इसलिए सभी लोग कह रहे थे, हम लोग भी कह रहे थे की यार 30 जून से पहले अपने गाड़ियों पर HSRP नंबर प्लेट लगाइएगा, लेकिन लोग सुनने का नाम नहीं. और कुछ कुछ लोग तो कहते थे ठीक है ना, देखा जाएगा, क्या ही हो जाएगा. देखो आप देख लो, अगर पैसा होगा तो आपको फाइन भरना ही पड़ेगा. एंड 30 जून इसकी आखिरी डेट थी, अब इसके बाद डेट मिलेगी या नहीं मिलेगी ये तो नहीं पता. अब जो होगा फेस करो इसको. एंड स्टे ट्यून्ड.
1: हम है इस पर.

कभी सोचा है, जब हम नींद में होते हैं तब भी कोई हमारी जान बचा रहा होता है, जब हम अपनों के साथ हंस रहे होते तब कोई किसी अजनबी की सांसें बचा रहा होता है, वो कोई और नहीं हमारे डॉक्टर्स होते हैं। आरजे अदनान आपके साथ। आज है 1 जुलाई यानी कि नेशनल डॉक्टर्स डे। उन हीरोज के नाम जो वक्त देखकर काम नहीं करते, हालात देखकर काम करते हैं। एक डॉक्टर की जिंदगी में सबसे यादगार पल कौन सा होता है पता है? पेशेंट का थैंक यू कहना नहीं, बल्कि वो पल जब किसी माँ की गोद खाली होते होते बच जाती है, जब आईसीयू से बाहर आकर किसी बच्चे की पहली हंसी सुनाई देती है, या जब कोई मरीज खुद चलकर बाहर आता है और कहता है, डॉक्टर साहब आप तो भगवान हो। मैंने एक डॉक्टर से पूछा था, आपने इतनी जिंदगियां बचाई है, सबसे खास पल कौन सा था? वो मुस्कुराए और कहा, एक बार एक 5 साल की बच्ची को बचाया था जिसका हार्ट ऑपरेशन था। 4 घंटे की सर्जरी के बाद जब वो होश में आई तो बोली, डॉक्टर अंकल अब मैं अपने डॉल को फिर से सीने से लगा सकती हूँ। बस यही पल मेरी जिंदगी का इनाम था। आज चलिए फिर शुक्रिया जरूर बोलेंगे उन सभी डॉक्टरों को जो अपनी जिंदगी छोड़कर हमारी जिंदगी बचाते हैं और जिन्हें हम भगवान का रुतबा देते हैं। सो सभी डॉक्टर्स को नेशनल डॉक्टर्स डे की ढेर सारी बहुत सारी शुभकामनाएं एंड बहुत बड़ा वाला थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग, क्योंकि आप हो इस वजह से हम जिंदा है। थैंक यू सो मच। Stay tuned on MGM 90.8 FM.

0: और आज है डॉक्टर्स डे, तो आज हम इसी पर बात करेंगे अबाउट डॉक्टर, उनकी लाइफ और उनकी मेंटल हेल्थ के बारे में। हमारे साथ है साइकेट्रिक्स डॉक्टर अमोल पात्रीकर सर। हेलो सर, आपका स्वागत है।
1: हेलो,
0: सबसे पहले सर आपको डॉक्टर्स डे की बहुत सारी शुभकामनाएं।
1: थैंक यू सो मच अदनान।
0: हमारी बातों का सिलसिला आगे ले जाने से पहले एक सवाल आपसे ये है कि आज डॉक्टर्स डे है, तो आपको कब फील हुआ था कि यार मुझे डॉक्टर बनना है, इस फील्ड में आना है, ये कब आपने तय किया था? स्कूल से था या बाद में फिर आपका ये एम बना था?
1: नहीं, वो तो मेरा स्कूल से ही था। बेसिकली घर में मेरे मामा जी भी डॉक्टर थे, मैंने उनका लाइफ देखा था एंड मुझे अच्छा लगा कि मेडिकल फील्ड में आप खुद भी दूसरों के लिए कुछ करने को मिलता है आपको, पेशेंट का अपन, हम लोग डॉक्टर्स जो रहते हैं वो उनको फिजिकली साइकोलॉजिकली सुदृढ़ करते हैं, उनको ख्याल उनको ठीक करते हैं, वो सेटिस्फेक्शन मैंने देखा है, वो बहुत अच्छा रहता है। एंड दूसरा प्रोफेशन रिस्पेक्ट था, मैंने उस वक्त देखा कि डॉक्टर्स को रिस्पेक्ट है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, कई सारे रीजन थे, वो पैशन था। मैंने स्कूल टाइम मुझे 7th-8th में मुझे शायद रियलाइज हुआ कि नहीं, मुझे मेडिकल फील्ड में ट्राई करना चाहिए एंड अकॉर्डिंगली मैंने उस तरह से पढ़ाई की एंड मैं मेडिकल को मैंने एडमिशन लिया।
0: साल की सर्विस होगी सर आपकी?
1: अभी मुझे एज ए साइकियाट्रिस्ट छत्रपति संभाजी नगर में मुझे 16 साल हुए हैं और मेरा दोनों साइकियाट्री यानी ओपीडी और दोनों एडमिट का आईपीडी, ऐसे दोनों हॉस्पिटल है।
0: क्या बात है सर। और सर 16 साल की सर्विस है और ऐसे बहुत सारे आपके फील्ड के डॉक्टर है जो बहुत सालों से डॉक्टरिंग कर रहे हैं, तो डॉक्टर की फिजिकल हेल्थ एंड मेंटल हेल्थ स्वस्थ रहती है
1: अभी क्या है? बराबर है, इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। कैसा है अपने देश में कि सबसे ज्यादा दो डॉक्टर्स आर ना, जो हालांकि डॉक्टर सबसे ज्यादा नॉलेज है उनको कि हेल्थ के बारे में उसे किस तरह से रहना चाहिए, बट सैड पार्ट ये है कि डॉक्टर का ही फिजिकल और मेंटल हेल्थ थोड़ा सा यहाँ पर चैलेंजिंग है। बिकॉज क्या है कि उनमें देखा जाता है कि डॉक्टरों में फिजिकल प्रॉब्लम जैसे डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, हार्ट प्रॉब्लम वगैरह वो ज्यादा आते हैं बिकॉज ऑफ उनका डेली हेक्टिक शेड्यूल होता है, स्ट्रेस रहता है, ये सब चीजें बहुत मायने रखती है, उन्हें टाइम मिलता नहीं है, वर्किंग आवर्स बहुत होते हैं, सो बिकॉज ऑफ दैट ना वो हमेशा इमोशनल बर्डन में रहते हैं, तो इस वजह से एंजाइटी, डिप्रेशन, स्लीपलेस नाइट्स होती है, रात में जाना होता है कभी कभार, इमरजेंसी होती है, इस वजह से नींद की दिक्कत आना। तो इंडिया में रादर ये देखा गया है कि डॉक्टरों की हालत जनरल पॉपुलेशन से उन लोगों में फिजिकली एज वेल एज साइकोलॉजिकली यानी डिप्रेशन, एंजाइटी, ये चीजें ज्यादा देखी गई है।
0: ओके,
1: हाँ, सो दिस इज अ वेरी सैड बट दो डॉक्टर्स इस बारे में हेल्थ के बारे में वो सबसे ज्यादा अवेयर है, उन्हें सबसे ज्यादा नॉलेज है, बट अपने देश में सबसे ज्यादा एक्चुअली जो फिजिकली एंड साइकोलॉजिकली इलनेस के लिए वो सबसे ज्यादा ससेप्टेबल है उन लोगों में, उल्टा डॉक्टर्स में ये ज्यादा पाया जा रहा है।
0: सो इन सब चीजों से डॉक्टर भी गुजरते हैं, तो हम सर के साथ और भी ढेर सारी बातें करेंगे अबाउट डॉक्टर्स और उनके मेंटल हेल्थ के बारे में, लेकिन कुछ ही देर में, तब तक के लिए स्टे ट्यून।

0: वेलकम बैक. यू आर लिसनिंग MGM 90.8 FM. आरजे अदनान आपके साथ है एंड आज है डॉक्टर्स डे. तो आज हम इसी पर बात कर रहे हैं. हमारे साथ है साइकेट्रिक्स डॉक्टर अमोल पाथ्रीकर सर. डॉक्टर, और उनकी मेंटल हेल्थ के बारे में बात करना भी बहुत जरूरी है क्योंकि आजकल के इस भागती दौड़ती जिंदगी में काम का प्रेशर इतना होता है और वो भी बहुत बर्न आउट होते हैं ऐसा मुझे लगता है, लेकिन इसके पीछे क्या रीजन है? तो सर, डॉक्टर्स भी बर्न आउट, डिप्रेशन, एंजाइटी के शिकार होते हैं क्या?
1: यस, ये अपने देश में इस तरह का माहौल है जिस वजह से डॉक्टर्स के ऊपर भारी स्ट्रेस है, बहुत ज्यादा स्ट्रेस. रादर मैं कहूंगा कि जनरल पॉपुलेशन से ज्यादा, सबसे ज्यादा स्ट्रेस यानी कुछ प्रोफेशन होते हैं, डॉक्टर्स है, पुलिस वाले, पुलिस पीपल है, आर्मी पीपल है, इन लोगों में वो स्ट्रेस बहुत ज्यादा देखा गया है. डॉक्टरों का अभी क्या है, उसमें रीजन भी कई सारे है कि उनमें डिप्रेशन, एंजाइटी इस वजह से भी कॉमन है. पहला कि देखो, वर्किंग आवर्स बहुत ज्यादा, 12-14 आवर्स दिन में काम करना पड़ता है. इतना होने के बाद रात में अगर इमरजेंसी होती है तो रात में भी जाना होता है. दूसरा, डॉक्टर्स हमेशा पेशेंट की हेल्थ पहले प्रायोरिटी रखते हैं, उसके लिए वो जी जान लगा देंगे एट द कॉस्ट ऑफ देयर हेल्थ. यानी वो डॉक्टर सो नहीं रहा है पर वो अपने पेशेंट को ठीक करने के लिए रात भर जग रहा है. वो अपनी फैमिली को छोड़कर, अपना घर बार छोड़कर पेशेंट को ठीक करने के लिए जा रहा है. सो क्या है कि रात में नींद नहीं होना, इसलिए रात में नींद की दिक्कतें बहुत आती है डॉक्टर्स में. हमेशा आप एक इमोशनल बर्डन में जीते हो क्योंकि आप रोज वो दुख देखते हो, सौरों देखते हो आप पेशेंट्स को, उनकी वो कठिनाइयां देखते हैं. कभी कभी डेथ्स होती है या डेथ की न्यूज ब्रेकआउट करना होता है, रिलेटिव्स को बताना होता है. इट्स अ वेरी चैलेंजिंग जॉब, इतना आसान नहीं है. वो सारे उस दुख दर्द रोज देखते हैं, इमोशनल बर्डन भी बहुत होता है, स्ट्रेस है. अपने यहाँ पे क्या है कि अभी यानी ऑलरेडी देखो, किसी के जिंदगी को यानी लाइफ एंड डेथ का सवाल होता है तो उसमें जी जान लगानी होती है. तो दे आर ऑलवेज ऑक्यूपाइड विद दैट थॉट कि पेशेंट को किस तरह से ठीक करे या पेशेंट को किस तरह से बचाया जाए. वो स्ट्रेस बहुत ज्यादा होता है, उनके ऊपर हावी होता है. और आजकल देखा जाए कि देखो अभी क्या है कि एक चीज और भी है कि आपने देखा है कि आजकल थोड़ा कुछ हुआ तो तुरंत पब्लिक वहां पे प्रीमाइसेस पे जाती है, थोड़ा ट्रबल क्रिएट करते हैं. तो अभी क्या है कि जैसे पब्लिक ने कैसा किया है कि डॉक्टर को एक तो तुरंत भगवान बनाते हैं, नहीं तो वो तुरंत उसे दानव बना देते हैं, राक्षस. यानी दोनों परसेप्शन होता है. तो क्या है कि देखो, वो एक ह्यूमन बीइंग है, उनके भी कुछ लिमिटेशंस है. और कोई भी डॉक्टर ये नहीं चाहता है कि वो किसी पेशेंट के साथ गलत हो. और अगर वो, मैं जैसे बताया कि अपना टाइम, अपनी फैमिली छोड़ के हॉस्पिटल में रहता है, इतनी चीजें उसको करनी होती है, तो वो जो एक चीज थोड़ी सी बढ़ गई है तो डॉक्टर्स थोड़ा सा स्ट्रेस में रहते हैं. हर चीज को उनको बहुत ही उस चीज का स्ट्रेस आता है कि कल चल के कोई गलत हुआ तो यही पब्लिक आएगी, फिर उनका नुकसान होता है, नाम भी बहुत खराब होता है. तो ये सब चीजों से थोड़ा हमेशा वो एक स्ट्रेस रहता है.
0: सो इन सबसे डॉक्टर्स जूझते हैं आज के वक्त में. एग्जैक्टली. सो हम और भी बातें करेंगे इसी टॉपिक पर कुछ ही देर में. तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड. पाळीव प्राण्यांच्या आरोग्याची आता खास काळजी MGM पेट केअर पेट क्लिनिक. आरोग्य तपासणी, उपचार, शस्त्रक्रिया, लसीकरण आणि अनेक पशुवैद्यकीय सेवा एकाच ठिकाणी. MGM क्रिकेट स्टेडियम जवळ N6. कॉन्टॅक्ट नंबर 9860679130. MGM पेट केअर.
2: फार्मसी मध्ये गुणवत्ता आणि संशोधन पूर्ण शिक्षणासाठी
3: MGM विद्यापीठाच्या डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्युटिकल सायन्स मध्ये प्रवेश घ्या,
2: जिथे डिप्लोमा इन फार्मसी अँड बॅचलर ऑफ फार्मसी मध्ये ऍडमिशन सुरू. ऑल्सो डिरेक्ट ऍडमिशन इन बी फार्मसी सेकंड इयर. अवेल अट्रॅक्टिव्ह स्कॉलरशिप्स,
3: अत्याधुनिक अशी लॅबोरेटरी, उच्च शिक्षित आणि अनुभवी स्टाफ, भव्य दिव्य असा MGM कॅम्पस. गुणवत्ता आणि दर्जेदार शिक्षणासाठी आजच प्रवेश निश्चित करा.
2: फॉर ऍडमिशन कॉन्टॅक्ट 9371714265 और विजिट www.mgmu.ac.in.
4: ऍडमिशन ओपन MGM युनिव्हर्सिटी स्कूल ऑफ इंजिनिअरिंग अँड टेक्नॉलॉजी. प्रोग्राम्स बीटेक 4 इयर्स आफ्टर HSC, कॉम्प्युटर सायन्स अँड इंजिनिअरिंग, IoT, सायबर सिक्युरिटी.
5: नमस्कार, छत्रपती संभाजीनगर.
6: तुम्ही ऐकत आहात MGM 90.8

0: पक्का जाना है।
1: वेट, आई थिंक वी शुड गो दैट वे।
0: ये तो खराब है।
1: ये मेरा लकी चार्म है और ये मुझे हमेशा राइट डायरेक्शन देता है। समटाइम्स इन लाइफ यू जस्ट हैव टू लेट इट गो और उसी फ्लो में सही मंजिल मिलती है।
0: मतलब तुम एक कंपास से अपनी जिंदगी डिसाइड कर।

0: Today we are celebrating Doctor's Day. You are listening MGM 90.8 FM. RJ Adnan आपके साथ है और डॉक्टर एंड उनके मेंटल हेल्थ फिजिकल हेल्थ के बारे में आज हम बात कर रहे हैं. हमारे साथ है साइकेट्रिक्स डॉक्टर अमोल पात्रीकर सर. तो सर कुछ देर पहले हमने बात की अबाउट डिप्रेशन एंग्जाइटी और बर्नआउट डॉक्टर्स के लाइफ में, तो इन सबको लेकर वो ऑलरेडी बहुत परेशान होते हैं, तो इसको ठीक करने के लिए क्या कुछ चेंजेस कर सकते हैं डॉक्टर्स?
1: मैं ये चाहता हूँ कि डॉक्टर्स ने देखो आप टाइम आपको नहीं होता है, आप स्ट्रेस में रहते हो, आप बर्नआउट होते हो, आपको बिल्कुल किसी चीज के लिए समय नहीं होता है. बट एक चीज मैं कहूंगा कि आपको अपने सारे डॉक्टर्स को समय निकालना चाहिए. सबसे इम्पोर्टेंट एक फिजिकल एक्टिविटी, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट, एटलीस्ट माइल्डर फॉर्म ऑफ एक्टिविटी, जैसे अपन वॉक करते हैं या जॉगिंग होती है या फिर आप वेट ट्रेनिंग वगैरह कर सकते हैं. इस तरह का एक कोई ना कोई फिजिकल एक्टिविटी इज वेरी वेरी इम्पोर्टेंट, जो कि फिर आपको फिजिकली हेल्थ आपका अच्छा रहे. और दूसरा कि जो फिजिकल एक्टिविटी से ही ब्रेन में कुछ पॉजिटिव हार्मोन्स क्रिएट होते हैं, जो कि आपको स्ट्रेस हैंडलिंग कैपेसिटी बढ़ाते हैं, आपका हैप्पीनेस बढ़ाते हैं. तो फिजिकल एक्टिविटी इज वेरी इंपॉर्टेंट. दूसरा डाइट जो होता है वो समय पे खाना नहीं खाना है, वो थोड़ा मुझे लगता है कि डॉक्टर्स ने वो कहीं ना कहीं

0: नेसेसरी, सारी चीजें जो होती है दे आर, स्लीप इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर. सोशली कनेक्ट होना चाहिए, ये सब चीज करके भी देखिए कि आपको फ्रेंड्स को मिलना चाहिए, या आपके हॉस्पिटल में आपका इस तरह से कल्चर रहो कि आप सोशली वहां पर भी एक दूसरे के साथ कनेक्ट रहो. एक ब्रेक फैमिली के साथ भी चाहिए, बिकॉज फैमिली के साथ अगर टाइम नहीं रहा. अभी एक चीज और भी हमने देखी है कि रिलेशनशिप कॉन्फ्लिक्ट या प्रॉब्लम या फिर मैरिटल इश्यूज जो मैरिज में जितनी चीजें आती है, बिकॉज डॉक्टर्स फैमिली के लिए टाइम नहीं देते, तो उनमें वो पर्सनल चीजें भी बहुत देखने को मिलती है. एक और चीज मैं कहूंगा डॉक्टर्स में हॉबी, डॉक्टर्स आर वेरी क्रिएटिव. मैंने मोस्ट ऑफ द डॉक्टर्स देखे कि सम डॉक्टर्स आर वेरी गुड सिंगर्स, सम डॉक्टर्स आर वेरी गुड आर्टिस्ट, वो ड्राइंग अच्छा करते हैं, पेंटिंग अच्छा करते हैं, कई सारी चीजें उनमें खासियत कहीं ना कहीं होती है. रीडिंग बहुत अच्छा होता है, कुछ लोगों का क्रिएटिविटी अच्छी होती है, राइटर होते हैं बहुत अच्छे डॉक्टर. तो मैं चाहता हूँ कि डॉक्टर्स ने, वो सारे डॉक्टर्स ने हॉबीज अपनी उन्होंने कोई ना कोई एक हॉबी डेवलप करनी चाहिए.
1: एग्जैक्टली, तो सभी डॉक्टर्स ये सब चीजें याद रखिएगा और अपनी मेंटल हेल्थ को वेल रखिएगा. और भी अपनी ढेर सारी बातें होगी कुछ ही देर में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड.

0: Let's talk about Doctor's Day. You are listening MTM 90.8 FM. RJ Adnan आपके साथ है and आज है Doctor's Day. तो इसी पर बात कर रहे हैं हम. हमारे साथ है Psychiatrist Dr. Amol Patrikar sir. About doctors और उनके mental health के बारे में बात कर रहे हैं. उनके life के बारे में हम बात कर रहे हैं क्या कुछ वो face करते हैं. तो sir एक आखिरी सवाल आपसे ये है कि सभी doctors को उनकी mental health ठीक रखने के लिए और burnout से बचने के लिए और जिंदगी में खुश रहने के लिए आप क्या मैसेज देना चाहोगे?
1: हाँ जी, अभी हम लोगों ने कई सारी चीजें डिस्कस की है, उसमें मेन यही एक मैसेज मैं देना चाहूंगा कि देखो आपकी आप सारे दुनिया का हम ख्याल रखते हैं, उनका हेल्थ के लिए हम उसके लिए सारे डॉक्टर्स और मेरे सारे कलीग्स हैं वो बहुत ही जी जान से मेहनत करते हैं, बट नॉट एट द कॉस्ट ऑफ अपनी हेल्थ. अपनी हेल्थ पहले प्रायोरिटी होनी चाहिए. अगर आप हेल्दी रहो तो फिर आप सोसाइटी को हेल्दी रख सकते हो. तो आप पहले सारे डॉक्टर्स ने पहले फिजिकली एंड साइकोलॉजिकली अगर आपने आपका हेल्थ अच्छा रखते हो तो देन वो काफी अच्छे से स्ट्रांगली खुद का ख्याल रख सकते हैं, फैमिली का ख्याल रख सकते हैं एंड आप सोसाइटी का भी बहुत अच्छे से ख्याल रख सकते हैं. तो पहली शुरुआत हमसे की जाए डॉक्टरों ने, फिर वो बाकी अगर वो दे आर डूइंग फिजिकली फिट है तो फिर वो और अच्छे से काम कर सकते हैं सोसाइटी के लिए, और अच्छे से स्ट्रांगली वो पेशेंट केयर बहुत अच्छे से दे सकते हैं.
0: यस, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया. बहुत अच्छा लगा आज आपसे बात करके.
1: थैंक यू.
0: एंड अबाउट डॉक्टर्स और उनके मेंटल हेल्थ के बारे में बहुत सारी बातें क्लियर हो गई. थैंक यू सो मच. और फिर से एक बार आपको तहे दिल से डॉक्टर्स डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं.
1: यस, थैंक यू. थैंक यू.

0: University Institute of Hotel Management is ready to help you make your career in hotel management, aviation, culinary arts, bakery and event management. Join NGM University, IHM. For admission, contact now at 87930-47544 or visit mgmu.ac.in.
1: तुमच्या करिअरसाठी योग्य पर्याय शोधताय? इन्स्टिट्यूट ऑफ इन्फॉर्मेशन अँड कम्युनिकेशन टेक्नॉलॉजी MGM University मध्ये मिळवा फ्युचर रेडी प्रोग्रामची सुवर्ण संधी.
2: बीटेक इन कम्प्युटर सायन्स अँड इंजिनिअरिंग, बीटेक इन आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स अँड मशीन लर्निंग, बीटेक इन इन्फॉर्मेशन टेक्नॉलॉजी, बीटेक इन डेटा सायन्स,
1: पीजी, एमटेक इन AI अँड ML, एमटेक डेटा सायन्स आणि इन्फॉर्मेशन टेक्नॉलॉजी मध्ये PhD करण्याची संधी, किंवा निवडा 12वी नंतर डिप्लोमा इन सायबर सिक्युरिटी अँड डिजिटल फॉरेन्सिक.
2: ऍडमिशन्स ओपन. फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल ऑन 9404-94299.
3: डिनर का मूड हो या फैमिली आउटिंग, टेस्ट और एमबीएस दोनों चाहिए तो आ जाइए मीनास किचन. यहाँ मिलेंगी डिलीशियस वेज नॉनवेज सूप, टेस्टी स्टार्टर्स, मलाई टिक्का कबाब, चिकन तंदूरी, मटन बुना और मीनास स्पेशल चिकन बिरयानी, रूफटॉप एम्बियंस, अमेजिंग टेस्ट और फुल फैमिली वाइब्स. मीनास किचन फैमिली गार्डन रेस्टोरेंट एंड चीयर्स कॉर्नर, बॉम्बे हाइट्स 9th फ्लोर, बीड बाईपास रोड, छत्रपति संभाजी नगर. क्या आप इंग्लिश, फ्रेंच, जर्मन या फिर जापानी सीखना चाहते हैं, या फिर अरेबिक, संस्कृत, मराठी और उर्दू में माहिर बनना चाहते हैं?
4: तो MGM University Institute of Indian and Foreign Language लेकर आया है BA Honors in English, MA English, MA मराठी, MA हिंदी, MA उर्दू, MA संस्कृत, PG Diploma in Arabic. डिप्लोमा प्रोग्राम्स, क्रिएटिव राइटिंग इन इंग्लिश, संस्कृत, फ्रेंच, जर्मन, उर्दू, जापानीज, पर्शियन एंड ट्रांसलेशन.
1: लिमिटेड सीट्स अवेलेबल. विजिट www.mgmu.ac.in और कॉल करें 9763 67 9245 और 9665353515.

भीगे जमी आसमानों मगर सूखा रहा एक मेरा ही घर। दुनिया है तेरी निगाहों में, बस तुझे मैं ही ना है।

सुन रहे हैं आपका फेवरेट शो दिल से और मैं हूं आपकी होस्ट दोस्त आरजे मनीषा आपके साथ। आप सभी को एक प्यारी सी और सुहानी शाम की बहुत बहुत शुभकामनाएं। गुड इवनिंग यार। दिन भर की भागदौड़ और कामकाज के बाद अब समय है थोड़ा आराम करने का, मुस्कुराने का और अपने पसंदीदा गानों के साथ इस शाम को और भी खास बनाने का। उम्मीद है कि आपका दिन अच्छा बीता होगा। अगर दिन थोड़ा मुश्किल भरा रहा हो तो चिंता मत कीजिए, क्योंकि आने वाले कुछ पलों में हम लेकर आए हैं बेहतरीन गाने, ढेर सारी बातें और मनोरंजन का पूरा तड़का। तो चाहे आप घर पर हो, ऑफिस से लौट रहे हो या फिर सफर में हो, बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि अगले कुछ मिनटों में आपकी शाम होने वाली है और भी सुहानी और यादगार। चलिए इसी खूबसूरत शाम की शुरुआत करते हैं एक शानदार गाने के साथ। सुनते रहिए आप, हमारे साथ बने रहिए। ओनली ऑन MG 90.8 FM, साथ है तो बात है।

0: मटन बुना और मीना स्पेशल चिकन बिरयानी, रूफटॉप एम्बियंस, अमेजिंग टेस्ट और फुल फैमिली वाइब्स। मीनास किचन फैमिली गार्डन रेस्टोरेंट एंड चीयर्स कॉर्नर, बॉम्बे हाइट्स 9th फ्लोर, बीड बाईपास रोड, छत्रपति संभाजी नगर।
1: मास्टर टुमारोस टैंक टुडे नॉट समडे, मेक टुडेज वन राइट डिसीजन टुमारोस ब्राइट फ्यूचर। जॉइन डॉक्टर जी वाई पार्सेकर कॉलेज ऑफ कंप्यूटर साइंस एंड आईटी एट एनजीएम यूनिवर्सिटी फॉर बीएससी ऑनर्स, बीसीए, डिजिटल मार्केटिंग, एनिमेशन, डेटा साइंस, एमएससी एंड पीजी डिप्लोमा, एनईपी 2020 रेडी, वर्ल्ड क्लास लैब्स और रियल इंडस्ट्री प्रोजेक्ट स्टार्ट। एडमिशन ओपन फॉर डॉक्टर जी वाई पार्सेकर कॉलेज फॉर 2026 एंड 27। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन विजिट mgmu.ac.in और कॉल ऑन 9371174254।

आप सुन रहे हैं आपका फेवरेट शो दिल से और मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त आरजे मनीषा आपके साथ। दोस्तों, आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में एक चीज़ बहुत ज़रूरी है और वो है अपने कामों की सही योजना बनाना, यानी स्केड्यूलिंग। हम अक्सर सोचते हैं कि दिन में 24 घंटे कम पड़ जाते हैं, लेकिन सच तो ये है कि अगर हम अपने कामों को पहले से तय कर ले तो समय की कमी काफ़ी हद तक दूर हो सकती है। सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक अगर हम अपने दिन की ज़रूरी कामों की एक छोटी सी सूची बना ले तो न सिर्फ हमारे काम समय पर पूरे होते हैं बल्कि तनाव भी कम हो जाता है। स्केड्यूलिंग का मतलब ये नहीं कि हर मिनट को बांध दिया जाए, बल्कि इसका मतलब है अपने समय को समझदारी से इस्तेमाल करना। जब हम पहले से तय कर लेते हैं कि किस समय कौन सा काम करना है तो हम ज़्यादा व्यवस्थित और आत्मविश्वासी महसूस करते हैं। तो दोस्तों, आज से ही एक छोटी सी आदत अपनाइए, हर रात सोने से पहले अगले दिन के लिए अगले आने वाले कामों की एक छोटी सी योजना बना लीजिए। यकीन मानिए, आपका दिन पहले से कई ज़्यादा आसान और बेहतर हो जाएगा। फिलहाल अपने समय को खास बनाइए और हमारे साथ जुड़े रहिए, क्योंकि अभी बाकी है ढेर सारी बातें और शानदार गाने सिर्फ हमारे साथ। ओनली ऑन एमजी 94.8 FM, साथ है तो बात है।

आप सुन रहे हैं आपका फेवरेट शो दिल से और मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त आरजे मनीषा आपके साथ। कहते हैं कि हर बड़ी सफलता की शुरुआत हमारे विचारों से होती है। अगर हम अपने मन में ये विश्वास रखें मैं सफल हो सकता हूँ या हो सकती हूँ, तो हमारी मंजिल की राह काफ़ी आसान हो जाती है। अक्सर हम किसी नए काम की शुरुआत करने से पहले ही सोचने लगते हैं कि पता नहीं मैं ये कर पाऊँगा या नहीं, लेकिन अगर हम खुद पर भरोसा करें और सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़े तो मुश्किल से मुश्किल रास्ता भी आसान लगने लगता है। खुद को सफल मानने का मतलब ये नहीं कि मेहनत की जरूरत नहीं, बल्कि इसका मतलब है कि आप अपने सपनों पर भरोसा करें, अपनी मेहनत पर विश्वास रखें और हर दिन एक कदम आगे बढ़ते रहिए। याद रखिए दोस्तों, जब आप खुद पर विश्वास करते हैं तो आपकी सोच बदलती है, आपका नजरिया बदलता है और धीरे धीरे आपकी जिंदगी भी बदलने लगती है। इसीलिए आज से खुद से कहिए, मैं कर सकती हूँ, मैं आगे बढ़ सकती हूँ और अपने सपनों को पूरा करना मेरा हक बनता है और वो मुझसे ज़रूर होगा। इसे सकारात्मक सोच के साथ मुस्कुराते रहिए और जुड़े रहिए हमारे साथ इन द शो दिल से, क्योंकि आगे भी आपका मनोरंजन जारी रहेगा शानदार गानों के साथ और दिलचस्प बातों के साथ। ओनली ऑन MJ 90.8 FM, साथ है तो बात है।

0: सुन रहे हैं आपका फेवरेट शो दिल से और मैं हूं आपकी होस्टर दोस्त आरजे मनीषा आपके साथ। जिंदगी में कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जिसके बिना सब कुछ अधूरा सा लगता है। कभी वो रिश्ता दोस्ती का होता है, कभी प्यार का, तो कभी अपने परिवार के साथ खास सदस्य का। उनकी मौजूदगी हमारी जिंदगी को खुशियों से भर देती है और जब वो शख्स हमारे साथ नहीं होता तो एक खालीपन सा महसूस होता है। ऐसा लगता है जैसे सब कुछ होते हुए भी कुछ कमी रह गई हो। यही तो खूबसूरती है रिश्तों की, जो हमें हंसना सिखाती है, आगे बढ़ना सिखाती है और हर मुश्किल में हमारा साथ निभाते हैं। तो यार, अपने करीबियों के लिए समय निकालना बहुत ज़रूरी है। कभी एक प्यारा सा मैसेज, एक फ़ोन कॉल या फिर दो मीठे बोल भी रिश्तों को और मजबूत बना देते हैं। तो अगर आपकी ज़िंदगी में भी कोई ऐसा खास शख्स है जो आपकी खुशियों की वजह है, तो आज ही उन्हें ये एहसास ज़रूर कराइए कि वो आपके लिए कितने खास है। और अब इसी खूबसूरत एहसास को और भी खास बनाइए और आगे सुनते हैं एक बहुत ही प्यारा गाना ओनली ऑन एमजीएम 90.8 एफएम। साथ है तो बात है
1: पाळीव प्राण्यांच्या आरोग्याची आता खास काळजी एमजीएम पेट केअर पेट क्लिनिक। आरोग्य तपासणी, उपचार, शस्त्रक्रिया, लसीकरण आणि अनेक पशुवैद्यकीय सेवा एकाच ठिकाणी। एमजीएम क्रिकेट स्टेडियम जवळ N6। कॉन्टॅक्ट नंबर 9860679130। एमजीएम पेट केअर।
2: फार्मसी मध्ये गुणवत्ता आणि संशोधन पूर्ण शिक्षणासाठी
3: एमजीएम विद्यापीठाच्या डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्युटिकल सायन्स मध्ये प्रवेश घ्या,
2: जिथे डिप्लोमा इन फार्मसी एंड बैचलर ऑफ फार्मेसी मध्ये एडमिशन सुरू। ऑल्सो डायरेक्ट एडमिशन इन बी फार्मसी सेकंड इयर। अवेल अट्रैक्टिव स्कॉलरशिप्स,
3: अत्याधुनिक अशी लॅबोरेटरी, उच्च शिक्षित आणि अनुभवी स्टाफ, भव्य दिव्य असा एमजीएम कॅम्पस। गुणवत्ता आणि दर्जेदार शिक्षणासाठी आज प्रवेश निश्चित करा।
2: फॉर एडमिशन कॉन्टॅक्ट 9371714265 और विजिट www.mgmu.ac.in।
4: एडमिशन ओपन एमजीएम यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी। प्रोग्राम्स बीटेक 4 इयर्स आफ्टर एचएससी, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, IoT, Cyber Security including Blockchain Technology, Computer Science and Engineering, Cyber Security, Electronics Engineering, VLSI Design and Technology, Electrical Engineering, Robotics and Automation. For admission visit mgmu.ac.in or contact 9371714253 or visit MGM Campus N6 Chhatrapati Sambhajinagar.

सुन रहे हैं आपका फेवरेट शो दिल से और मैं हूँ आपकी होस्ट और दोस्त आरजे मनीषा आपके साथ। बोले यार, खूबसूरत दिखना हर किसी को पसंद होता है और इसमें कोई बुराई भी नहीं है, लेकिन आजकल हम में से कई लोग मेकअप प्रोडक्ट का इस्तेमाल कर रहे हैं रोज़ाना और ज़रूरत से ज़्यादा करने लगे हैं। मेकअप आपकी खूबसूरती को निखार सकता है, लेकिन इसका ज़्यादा इस्तेमाल कभी कभी हमारी त्वचा को नुकसान भी पहुँचा सकता है। इसीलिए ज़रूरी है कि हम मेकअप का इस्तेमाल समझदारी से करें और अपनी त्वचा की देखभाल भी उतनी ही अहमियत से करें। साइंटिस्ट भी सलाह देते हैं कि अच्छी गुणवत्ता वाले प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करें, एक्सपायरी डेट ज़रूर देखें और दिन के अंत में मेकअप को अच्छी तरह साफ करना न भूलें। साथ ही अपनी त्वचा को बिना मेकअप के भी खुलकर सांस लेने का समय दें। असली खूबसूरती सिर्फ चेहरे में नहीं बल्कि आपकी मुस्कान, आत्मविश्वास और अच्छे व्यवहार में भी होता है। इसलिए खुद का ख्याल रखें, स्वस्थ रहें और अपनी प्राकृतिक खूबसूरती को अपनाएं। इसी खूबसूरत सोच के साथ अब समय है शानदार गाने का। बने रहिए हमारे साथ इन द शो दिल से, जहां संगीत और बातें दोनों दिल को छू जाती है। ओनली ऑन MG 90.8 FM, साथ ही तो बात है।

सुन रहे हैं आपका फेवरेट शो दिल से और मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त आरजे मनीषा आपके साथ। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में हम अक्सर अपनी त्वचा और बालों की देखभाल के लिए कई तरह के प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि प्रकृति ने हमें कितनी ऐसी चीज़ें दी है जो हमारी सुंदरता और हमारी सेहत दोनों के लिए फ़ायदेमंद हो सकती है। जैसे एलोवेरा, नारियल का तेल, आंवला, दही, बेसन या फिर गुलाब जल, ये प्राकृतिक चीज़ें वर्षों से हमारी परंपरा का हिस्सा रही है और आज भी लोग इनका इस्तेमाल करते हैं। हालांकि हर व्यक्ति की त्वचा और बाल अलग होते हैं, इसलिए कोई भी नया प्राकृतिक उपाय अपनाने से पहले ये देखना ज़रूरी है कि वो आपके लिए सही है या नहीं। अगर किसी चीज़ से एलर्जी या परेशानी महसूस हो तो उसका इस्तेमाल बंद कर देना चाहिए। और सबसे ज़रूरी बात ये है कि हम अपनी त्वचा और अपने बालों की देखभाल नियमित रूप से करें, पर्याप्त पानी पिए, अच्छा भोजन करें और स्वस्थ जीवन शैली अपनाएं, क्योंकि असली खूबसूरती अच्छी सेहत से ही आती है। तो आइए अपनी प्राकृतिक सुंदरता को अपनाइए और खुद का अच्छे से ख्याल रखें। अब बढ़ते हैं अगले शानदार गीत की ओर। बने रहिए हमारे साथ इन शो दिल से, जहां हर पल है खास, ओनली ऑन एमजी 90.8 FM। साथ है तो बात है।

0: University Institute of Hotel Management is ready to help you make your career in hotel management, aviation, culinary arts, bakery and event management. Join MGM University, IHM. For admission, contact now at 87930-47544 or visit mgmu.ac.in.
1: Nairashya, Bechani, Zopichi Samasya, Bheti, Chirchid, Ata Manasik Azar, Lapoichi Nahit, Upchar Gya, Samadhan Shodha.
2: Dr. Amol Patrikar, Manas Upchar, Vyasan Mukti Tadnya.
1: Satat Chichinta, Ati Vichar Karne, Bheti Vatne, Dasti Basne, Bhasone, Ghabarne, Sonshay Karne, Shankayene, Chirchid Bana, Ekas Ghosta, Puna Puna Karne, Mantra Chale Bana, Vyasan Dita, Lahan Muran Madil, Vrudar Madil, Manasik Lakshane, Vaivahik Samasya, Yasaro Samasya, Anwar Upchar, Ani Samadhan. Samupadeshan, Vyasan Mukti, Purusho, Mahila, Antar Rugna, Suvidha Uplabdha, Aazaz Bhet Diya.
2: Utkarsh Clinic, Harsul T Point, HP Petrol Pump, Shezari, Zargao Road, Chhatrapati, Sambhajinagar, Antar Rugna Vibhag, Disha Hospital, Samupadeshan Counseling Center, Sant Tukaram Natyagrahacha Zavar, Chhatrapati, Sambhajinagar. Contact on 888-99-2688.
1: तुमच्या करिअर साठी योग्य पर्याय शोधताय इंस्टिट्यूट ऑफ इन्फॉर्मेशन अँड कम्युनिकेशन टेक्नॉलॉजी एमजे युनिव्हर्सिटी मध्ये मिळवा फ्यूचर रेडी प्रोग्रामची सुवर्ण संधी
3: बीटेक इन कम्प्युटर सायन्स अँड इंजिनिअरिंग बीटेक इन आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स अँड मशीन लर्निंग बीटेक इन इन्फॉर्मेशन टेक्नॉलॉजी बीटेक इन डेटा सायन्स
1: पीजी एमटेक इन एआय अँड एमएल एमटेक डेटा सायन्स आणि इन्फॉर्मेशन टेक्नॉलॉजी मध्ये पीएचडी करण्याची संधी किंवा निवडा 12वी नंतर डिप्लोमा इन सायबर सिक्युरिटी अँड डिजिटल फॉरेन्सिक
3: ऍडमिशन्स ओपन फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल ऑन 9404942 9.
4: डिनर का मूड हो या फैमिली आउटिंग टेस्ट और एमबीएस दोनों चाहिए तो आ जाइए मीनास किचन यहाँ मिलेंगे डिलीशियस वेज नॉनवेज सूप टेस्टी स्टार्टर्स मलाई टिक्का कबाब चिकन तंदूरी मटन बुना और मीनास स्पेशल चिकन बिरयानी रूफटॉप एम्बियंस अमेजिंग टेस्ट और फुल फैमिली वाइब्स मीनास किचन फैमिली गार्डन रेस्टोरेंट एंड चीयर्स कॉर्नर बॉम्बे हाइट्स 9th फ्लोर बीड बाईपास रोड छत्रपति संभाजीनगर क्या आप इंग्लिश फ्रेंच जर्मन या फिर जापानी सीखना चाहते हैं या फिर अरेबिक संस्कृत मराठी और उर्दू में माहिर बनना चाहते हैं
2: तो एमजीएम यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन एंड फॉरेन लैंग्वेज लेकर आया है बीए ऑनर्स इन इंग्लिश एमए इंग्लिश एमए मराठी एमए हिंदी एमए उर्दू एमए संस्कृत पीजी डिप्लोमा इन अरेबिक डिप्लोमा प्रोग्राम्स क्रिएटिव राइटिंग इन इंग्लिश संस्कृत फ्रेंच जर्मन उर्दू जापानीज पर्शियन एंड ट्रांसलेशन
1: लिमिटेड सीट्स अवेलेबल विजिट www.mgmu.ac.in और कॉल करें 9763 67 9245 or 9665353515.

सुन रहे हैं आपका फेवरेट शो दिल से और मैं हूँ आपकी होस्ट और दोस्त आरजे मनीषा आपके साथ। आज की दुनिया में हम अक्सर खुद की तुलना दूसरों से करने लगते हैं। किसी का व्यक्तित्व अच्छा होता है, किसी की पर्सनालिटी अच्छी लगती है, किसी की सफलता तो किसी का रहन सहन। लेकिन इस तुलना के बीच हम एक बात भूल जाते हैं कि हर इंसान अपनी जगह खास होता है। खुद को वैसे ही स्वीकार करना जैसे हम हैं बहुत ज़रूरी होता है। ये इसका मतलब ये नहीं कि हम खुद को बेहतर बनाने की कोशिश न करें, बल्कि इसका मतलब है कि हम अपनी खुशियों और कमियों दोनों को समझें और उन्हें अपनाएं। याद रखिए, इस दुनिया में आपके जैसा दूसरा कोई नहीं है। आपकी मुस्कान, आपकी सोच, आपका अंदाज और आपकी पहचान, यही आपको सबसे अलग बनाती है। अगर आप खुद से प्यार करेंगे, खुद की रिस्पेक्ट करेंगे, तभी आप जीवन में कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़ पाएंगे। इसलिए दूसरों जैसा बनने की कोशिश करने की बजाय खुद का सबसे अच्छा रूप बनने की कोशिश कीजिए। वेल, तो आज से खुद से एक वादा कीजिए कि आप खुद को वैसे ही अपनाएंगे जैसे आप हैं, क्योंकि आप जैसे हैं बहुत खास है, आप जैसा दूसरा कोई नहीं है। इस खूबसूरत सोच के साथ मुस्कुराते रहिए और जुड़े रहिए हमारे साथ इन द शो दिल से। आप सुनते रहिए एक शानदार गाना ओनली ऑन MGM 90.8 FM। साथ है तो बात है।

0: आप सुन रहे हैं एमजीएम 90.8 FM और मैं हूं आपके साथ मनीषा। देखते देखते आज की ये खूबसूरत शाम अब विदा लेने लगी है और ऑफ कोर्स समय आ गया है कि मैं आपसे कहूं अलविदा। उम्मीद है कि आज के इस सफ़र में गानों और बातों के साथ आपने अच्छा समय बिताया होगा। अगर हमारी बातें आपके चेहरे पर थोड़ी सी मुस्कान ला पाई हो, अगर कोई गीत आपके दिल को छू गया हो, तो हमारा ये साथ सफल हो गया। ज़िंदगी में चाहे कितनी भी व्यस्तता क्यों ना हो, अपने लिए, अपने परिवार और अपने दोस्तों के लिए थोड़ा समय ज़रूर निकालिए। छोटी छोटी खुशियों को सजोइए, क्योंकि यही पल आगे चलकर खूबसूरत यादें बन जाते हैं। जाते जाते बस इतना ही कहना चाहूँगी कि हमेशा खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और अपने सपनों को पूरा करने की कोशिश करते रहिए। हर नई सुबह अपने साथ नई उम्मीद लेकर आती है, इसलिए सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते रहिए। अब दीजिए मुझे इजाज़त, आप सुनते रहिए दिल से, क्योंकि यहाँ संगीत का सफ़र कभी रुकता नहीं। एंड ऑफकोर्स आपसे विदा लेती हूँ। नमस्कार, शिवरात्रि और अपना ख्याल रखिए। सुनते रहिए एमजीएम 90.8 FM, साथ है तो बात है।
1: पाळीव प्राण्यांच्या आरोग्याची खास काळजी एमजीएम पेट केअर पेट क्लिनिक। आरोग्य तपासणी, उपचार, शस्त्रक्रिया, लसीकरण आणि अनेक पशुवैद्यकीय सेवा एकाच ठिकाणी। एमजीएम क्रिकेट स्टेडियम जवळ N6। कॉन्टॅक्ट नंबर 9860679130। एमजीएम पेट केअर।
2: फार्मसी मध्ये गुणवत्ता आणि संशोधन पूर्ण शिक्षणासाठी
3: एमजीएम विद्यापीठाच्या डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्युटिकल सायन्स मध्ये प्रवेश घ्या,
2: जिथे डिप्लोमा इन फार्मसी अँड बॅचलर ऑफ फार्मसी मध्ये ऍडमिशन सुरू। ऑल्सो डायरेक्ट ऍडमिशन इन बी फार्मसी सेकंड इयर। अवेल अट्रॅक्टिव्ह स्कॉलरशिप्स,
3: अत्याधुनिक अशी लॅबोरेटरी, उच्च शिक्षित आणि अनुभवी स्टाफ, भव्य दिव्य असा एमजीएम कॅम्पस। गुणवत्ता आणि दर्जेदार शिक्षणासाठी आजच प्रवेश निश्चित करा।
2: फॉर ऍडमिशन कॉन्टॅक्ट 9371714265 और विजिट www.mgmu.ac.in।
4: एडमिशन ओपन एमजीएम यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी। प्रोग्राम्स बीटेक 4 इयर्स आफ्टर HSC, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, IoT, साइबर सिक्योरिटी इंक्लूडिंग ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, साइबर सिक्योरिटी, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, VLSI डिजाइन एंड टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन। फॉर एडमिशन विजिट mgmu.ac.in और कॉन्टैक्ट 9371714253 और विजिट MGM कैंपस N6 छत्रपति संभाजीनगर।

कुछ साल पहले ना तो अपने छत्रपति संभाजीनगर में G20 परिषद हो गई थी और उस देर में यार अपना शहर कितना खूबसूरत नजर आ रहा था, याद तो है ना आपको। यू आर लिस्निंग MGM 90.8 FM, RJ अदनान आपके साथ है। एंड वो परिषद खत्म हो गया और उसके बाद फिर धीरे धीरे शहर पहले के जैसा जैसे थे सिचुएशन में आ गया था। एंड साफ सफाई वगैरह कुछ नहीं थी, पूरी पेंटिंग खराब हो गई थी। अब वापस से कहा गया है महापौर की तरफ से कि आने वाले वक्त में अपना शहर फिर से उसी तरीके से खूबसूरती से उभरते हुए नजर आएगा और शहर में दीवारों पर पेंटिंग्स होगी, सफाई होगी, सब रास्ते एकदम चकाचक हो जाएगी, एकदम ऐसे स्मूथ हो जाएगी। और उसके लिए ना तो अभी काम शुरू हो चुका है और इंडिया में ना तो सबसे खूबसूरत शहर और सफाई के मामले में इंदौर है ऐसा कहा जाता है। तो वही पैटर्न अपने छत्रपति संभाजीनगर में भी अपनाने वाले हैं और उस तरीके से अपने शहर को एक नए ओर लेकर जाने का काम ये शुरू होने वाला है और पूरे शहर में वॉर्ली पेंटिंग यूज की जाएगी और उसके जरिए अपने शहर को खूबसूरत बनाने की कोशिश होगी और इसका प्लानिंग शुरू हो चुका है एंड वर्क आफ्टर दिवाली से इसका शुरू हो सकता है ऐसा भी कहा जा रहा है। तो आई होप कि उसके बाद अपना शहर फिर से एक बार खूबसूरत नजर आएगा और खूबसूरती को बरकरार रखने का काम ये हम सबका है। तो ये भी याद रखियेगा, अपने शहर को गंदा मत कीजिए। बाकी तो बेस्ट विशेष फॉर दिस ब्यूटीफुल इनिशिएटिव एंड स्टे ट्यून।

आपने अपने गाड़ियों पर HSRP नंबर प्लेट लगाई है क्या? सच्ची सच्ची कहना, लगाई है या नहीं, या भूल गए? अगर भूल गए तो भाई साहब और बहन जी, दादाजी, दादी जी, अंकल जी, मौसा जी, याद रखिएगा, आपको फाइन भरना पड़ेगा, वो भी तकरीबन 1000 रुपए तक का। देखो, RTO ने हम सभी को डेडलाइन दी थी 30 जून तक की, और 30 जून से पहले हम सभी को अपने गाड़ियों पर HSRP नंबर प्लेट लगाना कंपलसरी था, और उसके बाद अब ये डेडलाइन खत्म हो चुकी है। एंड आज से 1 जुलाई के बाद जिन जिन गाड़ियों पर HSRP नंबर प्लेट नहीं रहेगी, उन पर RTO 1000 रुपए का फाइन मारने वाला है। तो तकरीबन अपने शहर में 4 लाख से भी ज्यादा गाड़ियों पर ये HSRP नंबर प्लेट लगा दी गई है, और 1 लाख से भी ज्यादा गाड़ियों पर नंबर प्लेट लगाना अब तक बाकी है। अब मन में सवाल आएगा, ठीक है ना भाई, इतना क्या है? अरे भाई, इतना क्या है नहीं, बहुत कुछ हो सकता है, और क्या कुछ हो सकता है, और आपके कौन कौन से काम आप नहीं कर पाओगे अगर आपके गाड़ी पर HSRP नंबर प्लेट नहीं रहेगी, वो बताऊंगा मैं आपको कुछ ही देर में। तब तक स्टे ट्यून्ड।

0: खुशी।
1: HSRP नंबर प्लेट लगाना अपने गाड़ियों को कंपलसरी है, अगर नहीं लगाया तो अब आपको पछताना पड़ेगा। यू आर लिसनिंग MGM 90.8 FM, RJ अदनान आपके साथ है एंड 30 जून तक इसकी डेडलाइन थी, अब डेडलाइन खत्म हो चुकी है और आज से जिन गाड़ियों पर ये नंबर प्लेट नहीं उनको 1000 का फाइन भरना पड़ेगा। आणि एक नवीन आदेश आलेला आहे, जर तुमच्या गाडीला नंबर प्लेट नसेल तर RTO ऑफिस मधील एकही काम तुमचं होणार नाही। आणि RTO कार्यालयात कोणकोणते काम असतात, लोकांचे वाहन हस्तांतर, ऍड्रेस चेंज करणे, व्हेइकल रजिस्ट्रेशन, व्हेइकल एक्सचेंज, परमिशन अपडेट आणि अजून जे काही काम असतात ते काम तुमचे RTO मध्ये होणार नाहीत। तो इसलिए सभी लोग कह रहे थे, हम लोग भी कह रहे थे की यार 30 जून से पहले अपने गाड़ियों पर HSRP नंबर प्लेट लगाइएगा, लेकिन लोग सुनने का नाम नहीं। और कुछ कुछ लोग तो कहते थे ठीक है ना, देखा जाएगा, क्या ही हो जाएगा। देखो आप देख लो, अगर पैसा होगा तो आपको फाइन भरना ही पड़ेगा। एंड 30 जून इसकी आखिरी डेट थी, अब इसके बाद डेट मिलेगी या नहीं मिलेगी ये तो नहीं पता, अब जो होगा फेस करो इसको एंड स्टे ट्यून्ड।

0: कभी सोचा है, जब हम नींद में होते हैं तब भी कोई हमारी जान बचा रहा होता है, जब हम अपनों के साथ हंस रहे होते तब कोई किसी अजनबी की सांसें बचा रहा होता है, वो कोई और नहीं हमारे डॉक्टर्स होते हैं। आरजे अदनान आपके साथ। आज है 1 जुलाई यानी कि नेशनल डॉक्टर्स डे। उन हीरोज के नाम जो वक्त देखकर काम नहीं करते, हालात देखकर काम करते हैं। एक डॉक्टर की जिंदगी में सबसे यादगार पल कौन सा होता है पता है? पेशेंट का थैंक यू कहना नहीं, बल्कि वो पल जब किसी माँ की गोद खाली होते होते बच जाती है, जब आईसीयू से बाहर आकर किसी बच्चे की पहली हंसी सुनाई देती है, या जब कोई मरीज खुद चलकर बाहर आता है और कहता है, डॉक्टर साहब आप तो भगवान हो। मैंने एक डॉक्टर से पूछा था, आपने इतनी जिंदगियां बचाई है, सबसे खास पल कौन सा था? वो मुस्कुराए और कहा, एक बार एक 5 साल की बच्ची को बचाया था जिसका हार्ट ऑपरेशन था। 4 घंटे की सर्जरी के बाद जब वो होश में आई तो बोली, डॉक्टर अंकल अब मैं अपने डॉल को फिर से सीने से लगा सकती हूँ। बस यही पल मेरी जिंदगी का इनाम था। आज चलिए फिर शुक्रिया जरूर बोलेंगे उन सभी डॉक्टरों को जो अपनी जिंदगी छोड़कर हमारी जिंदगी बचाते हैं और जिन्हें हम भगवान का रुतबा देते हैं। सो सभी डॉक्टर्स को नेशनल डॉक्टर्स डे की ढेर सारी बहुत सारी शुभकामनाएं एंड बहुत बड़ा वाला थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग, क्योंकि आप हो इस वजह से हम जिंदा है। थैंक यू सो मच। Stay tuned on MGM 90.8 FM. प्राण्यांच्या आरोग्याची आता खास काळजी MGM पेट केअर पेट क्लिनिक। आरोग्य तपासणी, उपचार, शस्त्रक्रिया, लसीकरण आणि अनेक पशुवैद्यकीय सेवा एकाच ठिकाणी। MGM क्रिकेट स्टेडियम जवळ N6। कॉन्टॅक्ट नंबर 9860679130। MGM पेट केअर।
1: फार्मसी मध्ये गुणवत्ता आणि संशोधन पूर्ण शिक्षणासाठी
2: MGM विद्यापीठाच्या डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्युटिकल सायन्स मध्ये प्रवेश घ्या,
1: जिथे डिप्लोमा इन फार्मसी अँड बॅचलर ऑफ फार्मसी मध्ये ऍडमिशन सुरू। ऑल्सो डिरेक्ट ऍडमिशन इन बी फार्मसी सेकंड इयर। अवेल अट्रॅक्टिव्ह स्कॉलरशिप।
2: अत्याधुनिक अशी लॅबोरेटरी, उच्च शिक्षित आणि अनुभवी स्टाफ, भव्य दिव्य असा MGM कॅम्पस। गुणवत्ता आणि दर्जेदार शिक्षणासाठी आजच प्रवेश निश्चित करा।
1: फॉर ऍडमिशन कॉन्टॅक्ट 9371714265 और विजिट www.mgmu.ac.in।
3: ऍडमिशन ओपन MGM युनिव्हर्सिटी स्कूल ऑफ इंजिनिअरिंग अँड टेक्नॉलॉजी। प्रोग्राम्स बीटेक 4 इयर्स आफ्टर HSC, कम्प्युटर सायन्स अँड इंजिनिअरिंग, IoT, सायबर सिक्युरिटी इन्क्लुडिंग ब्लॉकचेन टेक्नॉलॉजी, कम्प्युटर सायन्स अँड इंजिनिअरिंग, सायबर सिक्युरिटी, इलेक्ट्रॉनिक्स Engineering, VLSI Design and Technology, Electrical Engineering, Robotics and Automation. For admission, visit mgmu.ac.in or contact 9371714253 or visit MGM Campus, N6 Sidco, Chhatrapati, Sambhajinagar.

0: और आज है डॉक्टर्स डे, तो आज हम इसी पर बात करेंगे अबाउट डॉक्टर, उनकी लाइफ और उनकी मेंटल हेल्थ के बारे में। हमारे साथ है साइकेट्रिक्स डॉक्टर अमोल पात्रीकर सर। हेलो सर, आपका स्वागत है।
1: हेलो,
0: सबसे पहले सर आपको डॉक्टर्स डे की बहुत सारी शुभकामनाएं।
1: थैंक यू सो मच अदनान।
0: हमारी बातों का सिलसिला आगे ले जाने से पहले एक सवाल आपसे ये है कि आज डॉक्टर्स डे है, तो आपको कब फील हुआ था कि यार मुझे डॉक्टर बनना है, इस फील्ड में आना है, ये कब आपने तय किया था? स्कूल से था या बाद में फिर आपका ये एम बना था?
1: नहीं, वो तो मेरा स्कूल से ही था। बेसिकली घर में मेरे मामा जी भी डॉक्टर थे, मैंने उनका लाइफ देखा था एंड मुझे अच्छा लगा कि मेडिकल फील्ड में आप खुद भी दूसरों के लिए कुछ करने को मिलता है आपको, पेशेंट का अपन, हम लोग डॉक्टर्स जो रहते हैं वो उनको फिजिकली साइकोलॉजिकली सुदनिंग करते हैं, उनको ख्याल उनको ठीक करते हैं, वो सेटिस्फेक्शन मैंने देखा है, वो बहुत अच्छा रहता है। एंड दूसरा प्रोफेशन रिस्पेक्ट था, मैंने उस वक्त देखा कि डॉक्टर्स को रिस्पेक्ट है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, कई सारे रीजन थे, वो पैशन था। मैंने स्कूल टाइम मुझे 7-8 में मुझे शायद रियलाइज हुआ कि नहीं, मुझे मेडिकल फील्ड में ट्राई करना चाहिए एंड अकॉर्डिंगली मैंने उस तरह से पढ़ाई की एंड मैं मेडिकल को मैंने एडमिशन लिया।
0: साल की सर्विस होगी सर आपकी?
1: अभी मुझे एज अ साइकियाट्रिस्ट छत्रपति संभाजी नगर में मुझे 16 साल हुए हैं और मेरा दोनों साइकियाट्री यानी ओपीडी और दोनों एडमिट का आईपीडी से दोनों हॉस्पिटल है।
0: क्या बात है सर। और सर 16 साल की सर्विस है और ऐसे बहुत सारे आपके फील्ड के डॉक्टर है जो बहुत सालों से डॉक्टरिंग कर रहे हैं, तो डॉक्टर की फिजिकल हेल्थ एंड मेंटल हेल्थ स्वस्थ रहती है
1: अभी क्या है? बराबर है, इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। कैसा है अपने देश में कि सबसे ज्यादा दो डॉक्टर्स आर ना, जो हालांकि डॉक्टर सबसे ज्यादा नॉलेज है उनको कि हेल्थ के बारे में उसे किस तरह से रहना चाहिए, बट सैड पार्ट ये है कि डॉक्टर का ही फिजिकल और मेंटल हेल्थ थोड़ा सा यहाँ पर चैलेंजिंग है। बिकॉज क्या है कि उनमें देखा जाता है कि डॉक्टरों में फिजिकल प्रॉब्लम जैसे डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, हार्ट वर्क प्रॉब्लम वगैरह वो ज्यादा आते हैं बिकॉज ऑफ उनका डेली हेक्टिक शेड्यूल होता है, स्ट्रेस रहता है, ये सब चीजें बहुत मायने रखती है, उन्हें टाइम मिलता नहीं है, वर्किंग आवर्स बहुत होते हैं, सो बिकॉज ऑफ दैट है ना वो हमेशा इमोशनल बर्डन में रहते हैं, तो इस वजह से एंजाइटी, डिप्रेशन, स्लीपलेस नाइट्स होती है, रात में जाना होता है कभी कभार, इमरजेंसी होती है, इस वजह से नींद की दिक्कत आना। तो इंडिया में रादर ये देखा गया है कि डॉक्टरों की हालत जनरल पॉपुलेशन से उन लोगों में फिजिकली एज वेल एज साइकोलॉजिकली यानी डिप्रेशन, एंजाइटी, ये चीजें ज्यादा देखी गई है।
0: ओके,
1: हाँ, सो दिस इज अ वेरी सैड बैट, दो डॉक्टर्स इस बारे में हेल्थ के बारे में वो सबसे ज्यादा अवेयर है, उन्हें सबसे ज्यादा नॉलेज है, बट अपने देश में सबसे ज्यादा एक्चुअली जो फिजिकली एंड साइकोलॉजिकली इलनेस के लिए वो सबसे ज्यादा ससेप्टेबल है उन लोगों में, उल्टा डॉक्टर्स में ये ज्यादा पाया जा रहा है।
0: सो इन सब चीजों से डॉक्टर भी गुजरते हैं, तो हम सर के साथ और भी ढेर सारी बातें करेंगे अबाउट डॉक्टर्स और उनके मेंटल हेल्थ के बारे में, लेकिन कुछ ही देर में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड।

0: वेलकम बैक, यू आर लिसनिंग MGM 90.8 FM, RJ अदनान आपके साथ है एंड आज है डॉक्टर्स डे, तो आज हम इसी पर बात कर रहे हैं। हमारे साथ है साइकेट्रिक्स डॉक्टर अमोल पाथ्रीकर सर। डॉक्टर, और उनकी मेंटल हेल्थ के बारे में बात करना भी बहुत जरूरी है क्योंकि आजकल के इस भागती दौड़ती जिंदगी में काम का प्रेशर इतना होता है और वो भी बहुत बर्न आउट होते हैं ऐसा मुझे लगता है, लेकिन इसके पीछे क्या रीजन है? तो सर, डॉक्टर्स भी बर्न आउट, डिप्रेशन, एंजाइटी के शिकार होते हैं क्या?
1: यस, ये अपने देश में इस तरह का माहौल है जिस वजह से डॉक्टर्स के ऊपर भारी स्ट्रेस है, बहुत ज्यादा स्ट्रेस। रादर मैं कहूंगा कि जनरल पॉपुलेशन से ज्यादा, सबसे ज्यादा स्ट्रेस यानी कुछ प्रोफेशन होते हैं, डॉक्टर्स है, पुलिस वाले, पुलिस पीपल है, आर्मी पीपल है, इन लोगों में वो स्ट्रेस बहुत ज्यादा देखा गया है। डॉक्टरों का अभी क्या है, उसमें रीजन भी कई सारे है कि उनमें डिप्रेशन, एंजाइटी इस वजह से भी कॉमन है। पहला कि देखो, वर्किंग आवर्स बहुत ज्यादा, 12-14 आवर्स दिन में काम करना पड़ता है। इतना होने के बाद रात में अगर इमरजेंसी होती है तो रात में भी जाना होता है। दूसरा, डॉक्टर्स हमेशा पेशेंट की हेल्थ पहले प्रायोरिटी रखते हैं, उसके लिए वो जी जान लगा देंगे एट द कॉस्ट ऑफ देयर हेल्थ। यानी वो डॉक्टर सो नहीं रहा है पर वो अपने पेशेंट को ठीक करने के लिए रात भर जग रहा है। वो अपनी फैमिली को छोड़कर, अपना घर बार छोड़कर पेशेंट को ठीक करने के लिए जा रहा है। सो क्या है कि रात में नींद नहीं होना, इसलिए रात में नींद की दिक्कतें बहुत आती है डॉक्टर्स में। हमेशा आप एक इमोशनल बर्डन में जीते हो क्योंकि आप रोज दुख देखते हो, सौरों देखते हैं, आप पेशेंट्स को उनकी वो कठिनाइयां देखते हैं, कभी कभी डेथ्स होती है या डेथ की न्यूज ब्रेकआउट करना होता है, रिलेटिव्स को बताना होता है। इट्स ए वेरी चैलेंजिंग जॉब, इतना आसान नहीं है। वो सारे उस दुख दर्द रोज देखते हैं, इमोशनल बर्डन भी बहुत होता है, स्ट्रेस है। अपने यहाँ पे क्या है कि अभी यानी ऑलरेडी देखो, किसी के जिंदगी को यानी लाइफ एंड डेथ का सवाल होता है तो उसमें जी जान लगानी होती है, तो दे आर ऑलवेज ऑक्यूपाइड विद दैट थॉट कि पेशेंट को किस तरह से ठीक करें या पेशेंट को किस तरह से बचाया जाए। वो स्ट्रेस बहुत ज्यादा होता है, उनके ऊपर हावी होता है। और आजकल देखा जाए कि देखो अभी क्या है कि एक चीज और भी है कि आपने देखा है कि आजकल थोड़ा कुछ हुआ तो तुरंत पब्लिक वहां पे प्रीमाइसेस पे जाती है, थोड़ा ट्रबल क्रिएट करते हैं। तो अभी क्या है कि जैसे पब्लिक ने कैसा किया है कि डॉक्टर को एक तो तुरंत भगवान बनाते हैं, नहीं तो वो तुरंत उसे दानव बना देते हैं, राक्षस, यानी दोनों परसेप्शन होता है। तो क्या है कि देखो, वो एक ह्यूमन बीइंग है, उनके भी कुछ लिमिटेशंस है और कोई भी डॉक्टर ये नहीं चाहता है कि वो किसी पेशेंट के साथ गलत हो रहा है। अगर वो, मैं जैसे बताया कि अपना टाइम, अपनी फैमिली छोड़ के हॉस्पिटल में रहता है, इतनी चीजें उसको करनी होती है, तो वो जो एक चीज थोड़ी सी बढ़ गई है तो डॉक्टर्स थोड़ा सा स्ट्रेस में रहते हैं। हर चीज को उनको बहुत ही उस चीज का स्ट्रेस आता है कि कल चल के कोई गलत हुआ तो यही पब्लिक आएगी, फिर उनका नुकसान होता है, नाम भी बहुत खराब होता है, तो ये सब चीजों से थोड़ा हमेशा वो एक स्ट्रेस रहता है।
0: सो इन सबसे डॉक्टर्स जूझते आज के वक्त में, एग्जैक्टली। सो हम और भी बातें करेंगे इसी टॉपिक पर कुछ ही देर में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड।
2: तुमच्या मित्राच्या मनातला आवाज तुम्ही कधी ऐकलाय का?

0: GM University Institute of Hotel Management is ready to help you make your career in hotel management, aviation, culinary arts, bakery and event management. Join MGM University, IHM. For admission, contact now at 87930-47544 or visit mgmu.ac.in.
1: तुमच्या करिअरसाठी योग्य पर्याय शोधताय? इन्स्टिट्यूट ऑफ इन्फॉर्मेशन अँड कम्युनिकेशन टेक्नॉलॉजी MGM युनिव्हर्सिटी मध्ये मिळवा फ्युचर रेडी प्रोग्रामची सुवर्ण संधी.
2: बीटेक इन कम्प्युटर सायन्स अँड इंजिनिअरिंग, बीटेक इन आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स अँड मशीन लर्निंग, बीटेक इन इन्फॉर्मेशन टेक्नॉलॉजी, बीटेक इन डेटा सायन्स,
3: पीजी, एमटेक इन AI अँड ML, एमटेक डेटा सायन्स आणि इन्फॉर्मेशन टेक्नॉलॉजी मध्ये PhD करण्याची संधी, किंवा निवडा 12वी नंतर डिप्लोमा इन सायबर सिक्युरिटी अँड डिजिटल फॉरेन्सिक.
2: ऍडमिशन्स ओपन. फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल ऑन 9404942 9।
4: क्या आप इंग्लिश, फ्रेंच, जर्मन या फिर जापानी सीखना चाहते हैं, या फिर अरेबिक, संस्कृत, मराठी और उर्दू में माहिर बनना चाहते हैं?
5: तो MGM यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन एंड फॉरेन लैंग्वेज लेकर आया है BA ऑनर्स इन इंग्लिश, MA इंग्लिश, MA मराठी, MA हिंदी, MA उर्दू, MA संस्कृत, PG डिप्लोमा इन अरेबिक. डिप्लोमा प्रोग्राम्स, क्रिएटिव राइटिंग इन इंग्लिश, संस्कृत, फ्रेंच, जर्मन, उर्दू, जापानीज, पर्शियन एंड ट्रांसलेशन.
6: लिमिटेड सीट्स अवेलेबल. विजिट www.mgmu.ac.in और कॉल करें 9763 67 9245 और 9665353515.

0: टुडे वी आर सेलिब्रेटिंग डॉक्टर्स डे. यू आर लिसनिंग MGM 90.8 FM. आरजे अदनान आपके साथ है और डॉक्टर्स एंड उनके मेंटल हेल्थ फिजिकल हेल्थ के बारे में आज हम बात कर रहे हैं. हमारे साथ है साइकेट्रिक्स डॉक्टर अमोल पात्रीकर सर. तो सर कुछ देर पहले हमने बात की अबाउट डिप्रेशन एंग्जाइटी और बर्नआउट डॉक्टर्स के लाइफ में, तो इन सबको लेकर वो ऑलरेडी बहुत परेशान होते हैं, तो इसको ठीक करने के लिए क्या कुछ चेंजेस कर सकते हैं डॉक्टर्स?
1: मैं ये चाहता हूँ कि डॉक्टर्स ने देखो आप टाइम आपको नहीं होता है, आप स्ट्रेस में रहते हो, आप बर्नआउट होते हो, आपको बिल्कुल किसी चीज के लिए समय नहीं होता है. बट एक चीज मैं कहूंगा कि आपको सारे डॉक्टर्स को समय निकालना चाहिए. सबसे इम्पोर्टेंट एक फिजिकल एक्टिविटी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एटलीस्ट माइल्डर फॉर्म ऑफ एक्टिविटी, जैसे अपन वॉक करते हैं या जॉगिंग होती है या फिर आप वेट ट्रेनिंग वगैरह कर सकते हैं. इस तरह का एक कोई ना कोई फिजिकल एक्टिविटी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि फिर आपको फिजिकली हेल्थ आपका अच्छा रहे. और दूसरा कि जो फिजिकल एक्टिविटी से ही ब्रेन में कुछ पॉजिटिव हार्मोन्स क्रिएट होते हैं जो कि आपको स्ट्रेस हैंडलिंग कैपेसिटी बढ़ाते हैं, आपका हैप्पीनेस बढ़ाते हैं. तो फिजिकल एक्टिविटी इज वेरी इंपॉर्टेंट. दूसरा डाइट जो होता है वो समय पे खाना नहीं खाना है, वो थोड़ा मुझे लगता है कि सारे डॉक्टर्स ने वो कहीं ना कहीं थोड़ा समय निकाल के टाइम पे अगर अपना डाइट लेते हैं, डाइट में भी देखो फॉर अ न्यूट्रिशियस डाइट, अगर आप हाई प्रोटीन डाइट लेते हो या वेजिटेबल अच्छे लेते हो. थोड़ा सा मैं चाहता हूँ कि जैसे समय मिले कभी योगा मेडिटेशन या ब्रीदिंग एक्सरसाइज अगर हो तो वो थोड़ा काम डाउन के लिए उन्हें हेल्प करता है. एक चीज मैं कहूंगा और कि देखो प्रायोरिटाइज अगर आपकी नींद एटलीस्ट 6 to 7 hours नींद होनी चाहिए डॉक्टर्स की, तो उससे रिलेटेड सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होते हैं. साइकोलॉजिकली भी होते हैं, डिप्रेशन एंजाइटी बहुत कॉमन है, या इवन जो मैंने कहा है कि फिजिकल हेल्थ और डायबिटीज, हार्ट प्रॉब्लम, ब्लड प्रेशर, ये सारी चीजें जो होती है, दे आर स्लीप इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर. सोशली कनेक्ट होना चाहिए, ये सब चीज करके भी देखिए कि आपको फ्रेंड्स को मिलना चाहिए या आपके हॉस्पिटल में आपके इस तरह से कल्चर रहो कि आप सोशली वहां पर भी एक दूसरे के साथ कनेक्ट रहो. एक ब्रेक फैमिली के साथ भी चाहिए, बिकॉज फैमिली के साथ अगर टाइम नहीं रहा. अभी एक चीज और भी हमने देखी है कि रिलेशनशिप कॉन्फ्लिक्ट या प्रॉब्लम या फिर मैरिटल इश्यूज जो मैरिज में जितनी चीजें आती है, बिकॉज डॉक्टर्स फैमिली के लिए टाइम नहीं देते, तो उनमें वो पर्सनल चीजें भी बहुत देखने को मिलती है. एक और चीज मैं कहूंगा डॉक्टर्स में हॉबी, डॉक्टर्स आर वेरी क्रिएटिव. मैंने मोस्ट ऑफ द डॉक्टर्स देखे कि सम डॉक्टर्स आर वेरी गुड सिंगर्स, सम डॉक्टर्स आर वेरी गुड आर्टिस्ट, वो ड्रॉइंग अच्छा करते हैं, पेंटिंग अच्छा करते हैं, कई सारी चीजें उनमें खासियत कहीं ना कहीं होती है. रीडिंग बहुत अच्छा होता है, कुछ लोगों का क्रिएटिविटी अच्छी होती है, राइटर होते हैं बहुत अच्छे डॉक्टर. तो मैं चाहता हूँ कि डॉक्टर्स ने वो सारे डॉक्टर्स ने हॉबीज अपनी उन्होंने कोई ना कोई एक हॉबी डेवलप करनी चाहिए.
0: एग्जैक्टली. तो सभी डॉक्टर्स ये सब चीजें याद रखिएगा और अपनी मेंटल हेल्थ को वेल रखिएगा. और भी अपनी ढेर सारी बातें होगी कुछ ही देर में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड.

0: Let's talk about Doctor's Day. You are listening MGM 90.8 FM. RJ Adnan आपके साथ है and आज है Doctor's Day. तो इसी पर बात कर रहे हैं हम. हमारे साथ है Psychiatrist Dr. Amol Patrikar sir about doctors और उनके mental health के बारे में बात कर रहे हैं. उनके life के बारे में हम बात कर रहे हैं क्या कुछ वो face करते हैं. तो sir एक आखिरी सवाल आपसे ये है कि सभी doctors को उनकी mental health ठीक रखने के लिए और burnout से बचने के लिए और जिंदगी में खुश रहने के लिए आप क्या मैसेज देना चाहोगे?
1: हाँ जी, अभी हम लोगों ने कई सारी चीजें डिस्कस की है, उसमें मेन यही एक मैसेज मैं देना चाहूंगा कि देखो आपकी आप सारे दुनिया का हम ख्याल रखते हैं, उनका हेल्थ के लिए हम उसके लिए सारे डॉक्टर्स और मेरे सारे कलीग्स हैं वो बहुत ही जी जान से मेहनत करते हैं, बट नॉट एट द कॉस्ट ऑफ अपनी हेल्थ. अपनी हेल्थ पहले प्रायोरिटी होनी चाहिए. अगर आप हेल्दी रहो तो फिर आप सोसाइटी को हेल्दी रख सकते हो. तो आप पहले सारे डॉक्टर्स ने पहले फिजिकली एंड साइकोलॉजिकली अगर आपने आपका हेल्थ अच्छा रखते हो तो देन वो काफी अच्छे से स्ट्रांगली खुद का ख्याल रख सकते हैं, फैमिली का ख्याल रख सकते हैं एंड आप सोसाइटी का भी बहुत अच्छे से ख्याल रख सकते हैं. तो पहली शुरुआत हमसे की जाए डॉक्टरों ने, फिर वो बाकी अगर वो दे आर डूइंग फिजिकली फिट है तो फिर वो और अच्छे से काम कर सकते हैं सोसाइटी के लिए और अच्छे से स्ट्रांगली वो पेशेंट केयर बहुत अच्छे से दे सकते.
0: थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया. बहुत अच्छा लगा आज आपसे बात करके.
1: थैंक यू.
0: एंड अबाउट डॉक्टर्स और उनके मेंटल हेल्थ के बारे में बहुत सारी बातें क्लियर हो गई. थैंक यू सो मच. और फिर से एक बार आपको तहे दिल से डॉक्टर्स डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं.
1: यस, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच.
2: पाळीव प्राण्यांच्या आरोग्याची आता खास काळजी MGM पेट केअर पेट क्लिनिक. आरोग्य तपासणी, उपचार, शस्त्रक्रिया, लसीकरण आणि अनेक पशुवैद्यकीय सेवा एकाच ठिकाणी. MGM क्रिकेट स्टेडियम जवळ N6. कॉन्टॅक्ट नंबर 9860679130. MGM पेट केअर.
3: फार्मसी मध्ये गुणवत्ता आणि संशोधन पूर्ण शिक्षणासाठी
4: MGM विद्यापीठाच्या डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्युटिकल सायन्स मध्ये प्रवेश घ्या,
3: जिथे डिप्लोमा इन फार्मसी अँड बॅचलर ऑफ फार्मसी मध्ये ऍडमिशन सुरू. ऑल्सो डिरेक्ट ऍडमिशन इन बी फार्मसी सेकंड इयर. अवेल अट्रॅक्टिव्ह स्कॉलरशिप्स,
4: अत्याधुनिक अशी लॅबोरेटरी, उच्च शिक्षित आणि अनुभवी स्टाफ, भव्य दिव्य असा MGM कॅम्पस. गुणवत्ता आणि दर्जेदार शिक्षणासाठी आज प्रवेश निश्चित करा.
3: फॉर ऍडमिशन कॉन्टॅक्ट 9371714265 और विजिट www.mgmu.ac.in. ऍडमिशन ओपन MGM युनिव्हर्सिटी स्कूल ऑफ इंजिनिअरिंग अँड टेक्नॉलॉजी. प्रोग्राम BTech 4 इयर्स आफ्टर HSC, कम्प्युटर सायन्स अँड इंजिनिअरिंग, IoT, सायबर सिक्युरिटी इन्क्लुडिंग ब्लॉकचेन टेक्नॉलॉजी, कम्प्युटर सायन्स अँड इंजिनिअरिंग, सायबर सिक्युरिटी, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजिनियरिंग, VLSI डिझाईन अँड टेक्नॉलॉजी, इलेक्ट्रिकल इंजिनियरिंग, रोबोटिक्स अँड ऑटोमेशन. फॉर ऍडमिशन विजिट mgmu.ac.in और कॉन्टॅक्ट 9371714253 और विजिट MGM कॅम्पस N6 सिडको छत्रपती संभाजीनगर.

0: जिस तरह लखनऊ के दो नवाबों की गाड़ी पहले आप घर से निकल गई थी, उस तरह हमारी पहले तुम में ये मस्ती भरे रुत न चली जाए।
1: अच्छा मैं कहती हूँ